ओम श्री दीपनारायण भगवान की देव शर्मादेव की हिंदू धर्म समर्षि स्वामी माधवानंद जी सदगुरुदेव की ईश्वर गुरु मंडलेश्वर परम श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की श्री दीपनारायण भगवान की जय।

0: भगवान की जय। श्री माता वनंद होली गुरु जी श्री सत्ता गुरुदेव श्री दीप नारायण भगवान
1: की जय।

0: Sarupa che ghiata, Om Namo Prabhudir Karma, Ramananda Nururvasi.
1: Om Shala Purdi Made,
0: Ki Jai,
1: Vadi
0: Devyashtar Made, Ki Jai, Ki Jai.
2: हिंदू धर्म सम्राट परमहंसम श्री माधवानंद पुरजी सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंसम श्री

0: गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। ओम शांति शांति शांति। आराध्य भगवान अलकपुरी जी महादेव की जय। देवाधिदेव देवेश्वर भगवान देवपुरी जी महाराज की जय। सतगुरु दीप नारायण महाप्रभु जी की परम कृपा शांति। ओम महाप्रभु जी। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। ऑल माय डियर
1: मोये द्राजी
0: गुड इवनिंग
1: दोबरी वेचर।
0: वी आर वेरी ब्लेस्ड दैट वी कैन हैव सत्संग मीन्स गुरुदेव।
1: Je to velké požehnání, máme velké požehnání, že můžeme mít satsang s Gurudevou.
0: It is our Gurudev who give us knowledge and takes up to the supreme highest God or where we can go above everything.
1: Náš Gurudev nám dává poznání a dává nám cestu k nejvyššímu.
0: From Shiva, Brahma, Vishnu, above them also still, above the Shiva times, is that Guru Kripa.
1: Nad Šivou, Brahmou a Višnuhem je ještě výše Guru Kripa.
0: May Shiva

0: अलग पुरी जी महादेव की जय, देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की ओम। हरिओम हरिओम।
1: विश्वगुरु परमांशी स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेव की जय।

काली चतुर्विभु सद्गुरु भगवान की जय। काशी पति विश्वनाथ नित्य प्रति सर प्रकार से बड़ी उच्च वृत्ति से विशुद्ध वृत्ति से जो उसी ब्रह्म रूप में लिपायमान रहते हैं उन महान सद्गुरु देव के चरणार विंद में कोटि सत नमस्कार करके ये जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगति गोति सहसो हम स्वाहा ओम ह्यम हमसो हम स्वाहा ओम ह्यम हम सहसो हम स्वाहा सर्वर्दे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्व पाप हरे देव कर रहा हूँ वो हमारे सारे मनोरथ को सिद्ध करे। ओम अग्नेर वाक्मनसी यजुर्वेदेन जुष्टा सोमम पिबस्वाहा ओम अग्नेर वाक्मनसी यजुर्वेदेन जुष्टा सोमम पिबस्वाहा ओम अग्नेर वाक्मनसी यजुर्वेदेन जुष्टा सोमम पिबस्वाहा ओम ह्रीं ऐं त्रैलोक्य मोहिनी चामुंडा महादेवी सुरासुर वंदनी ह्रीं ऐं स्वाहा ओम क्रीं कानेन्दी भेदनाय ओम अग्नेर वाक्मनसी यजुर्वेदेन जुष्टा सोमम पिबस्वाहा ओम अग्नेर वाक्मनसी यजुर्वेदेन जुष्टा सोमम पिबस्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् यजुर्वेदेन जुष्टा सोमम पिबस्वाहा परानं महाकालकालं कृपानं गुणांगार संस

ओम श्री दीप नारायण भगवान की देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की सत्य सनातन धर्म